दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: Sunrise Retro.
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

0: This is Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix.
1: Ye hai Sunrise
0: Retro.
2: सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनों अरे मदन भाई छक्कन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओए कर्नल सिंह अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: This is Sunrise Retro.
1: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, four pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
2: No worries. I'm having fun on PlayOjo.
3: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
1: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
2: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
4: Feel the fun. PlayOjo.
3: 18 plus gamble aware.
5: London ka retro Asian mix, Sunrise Retro ko sunne ke liye shukriya. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेडियो को सुनना मत भूलिएगा ऑन 963 एंड 972 एएम इन लंदन नेशन वाइड ऑन डीएबी दुनिया भर में वाया sunriseradio.com फ्री सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर्स या रेडियो प्लेयर एंड नेशन प्लेयर ऐप पर एडवर्टाइज ऑन सनराइज रेट्रो टुडे लंदन्स रेट्रो एशियन मिक्स कॉल द सनराइज रेट्रो सेल्स टीम ऑन 020-8574-7777 Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix.

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।